0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-2648-435।
4: تروشه چې در لا اسما فرموله بیوټی کریم درکم، نه پکې د سیرم او مکس کول ضرورت شته او نه ویتامین کپسول، او ګارانټای سره به خوراکای ته مخ درته صفه کوي ان شاء الله.
5: وا اسما فرموله بیوټی کریم زنده باد.

दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

भाई क्या अभी अपनी मंडी से ढूंढ के ले आ चुके हैं अपने लिए जानवर? या भी सोच रहे हैं, या भी बस लोगों से पूछ रहे हैं भाई कितने क्या

0: जी जनाब, कुर्बानी के दिन है और बस आखिरी दिन चल रहे हैं, लेकिन आज महकमा मौसमियात ने जनाब कोई हमारे साथ ज्यादती कर दी है कि जनाब आज जो पेशन गोई की गई है कि हमारे इलाकों में, यानी कि ये जो हमारा इलाका है जिनसे हमारा वास्ता है, डेरा इस्माइल खान पहाड़पुर और टांग का वज़ीरिस्तान का इलाका है, कि भाई इस ईद के ऊपर भाई कोई अच्छी उम्मीद नहीं है मौसम की तरफ से। जनाब कहा जा रहा है कि 25 से आज है 23 तारीख, कल का दिन छोड़कर हज वाले दिन से हीट वेव दाखिल हो रही है हमारे इन इलाकों में, और जनाब ये चौथी ईद तक जारी रहेगी, यानी कोई इम्कान नहीं है बादलों का, ठंडी ठंडी हवाओं का, और इस सूरत हाल में हम कुर्बानी भी करेंगे। और हाँ जनाब बिल्कुल, लेकिन जो भी हो, मौसम जैसा भी हो भाई, इस कुर्बानी को दिल से करना है, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। कि जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इशारे को समझते हुए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तपते सहरा में ले गए थे जनाब, और किसी चीज की परवाह नहीं की, और कहा जाता है कि रिवायत में कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बुढ़ापे में मिले थे, बहुत सारी मन्नतों के बाद मिले थे। लेकिन देखिए जनाब, जहाँ पर रजाए खुदा दिल के अंदर हो, अल्लाह की मोहब्बत प्रायोरिटी रखती हो, तो फिर नहीं देखा जाता कितनी प्यारी चीज अल्लाह को हम पेश करने जा रहे हैं।
1: हम कुर्बानी को पैसों के बजाय इखलास में तोलें।
2: मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल,
3: मौला कर ले कबूल, मौला कर ले कबूल,
4: बकरा ईद पे कुर्बान।
0: जी जनाब, कुर्बानी हम करते हैं, क्या फलसफा है जनाब, बिंग मुस्लिम, जहां पर हम मुसलमान, हम सब अपनी रिवायात से वाकिफ हैं, और तारीख इस्लाम हमें क्या बताती है, और हमारे अबाओ अजदाद हमें क्या बताते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या था कि आज उसी लेगेसी को हम कंटिन्यू करके आ रहे हैं, और हर साल 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी करते हैं, तो क्या वजह थी, कहानी क्या है, दास्तान क्या है।

जी जनाब, कैसे नेशनल पाकिस्तान का ये टी टाइम आप सब को हम वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। और इस प्रोग्राम के अंदर ढेर सारी बातें होती हैं जनाब आप लोगों के साथ, क्योंकि केसन कंपनी जो है वो आपके बारे में सोचती रहती है। और किस मौके के ऊपर आपको क्या चाहिए भाई, गर्मियां हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे, सर्दियां हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे, और जनाब छोटी ईद आ गई है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, और अगर बड़ी ईद आ गई है तो अब क्या खरीदना चाहिए केसन का, है जी?

भाई जनाब बद हजमी का अगर आप शिकार रहते हैं और अगर नहीं भी रहते तो भाई ईद के ऊपर ये जो बड़ी ईद आ रही है इसमें चूंकि हम कुर्बानी करते हैं सो कुर्बानी के हवाले से गोश्त वाफर मिकदार में आपके घर में होता है, रूटीन में आप जो गोश्त खाते हैं उससे बहुत कम है लोगों को बदहजमी हो जाए। हाँ अगर आपको मुफ्त का खाना मिल जाए कोई वलीमा वगैरह तो फिर ठोंस के आते हैं बहुत सारी बोटियाँ और उसके बाद जो होता है ना फिर बदहजमी जरूर होती है जब आप गोश्त को एक लिमिट से ज्यादा खा लेते हैं। ठीक है जनाब, बदहजमी फिर आपको जरूर होती है और ईद जो आने वाली है बड़ी ईद इसके ऊपर तो गोश्त ही गोश्त हर तरफ होता है। आप देखिए कि ईद के दूसरे और तीसरे दिन अगर आप डॉक्टरों के पास चक्कर लगाए ना तो डॉक्टरों के क्लिनिक्स भरे होते हैं जनाब मरीजों के साथ और सारे मरीज बदहजमी के होते हैं, किसी का पेट खराब है, किसी को दस्त लगी हुई है, किसी को उल्टी आ रही है, किसी को क्या हो रहा हो, तो वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि भाई आपने बेजा गोश्त खा लिया है। ठीक है जनाब, आपने हद से ज्यादा जो है वो आपने गोश्त खा लिया है, आपने बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खा ली हैं, यानी कि आपने बहुत ज्यादा नमकीन गोश्त खा लिया। मैं आपको मना नहीं कर रहा भाई, कुर्बानी आ रही है, सही तरीके से गोश्त खाना है हर किसी ने, लेकिन वो लिमिट्स के अंदर रहते हुए अगर आप खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप गोश्त को भी इंजॉय कर रहे हैं और आपका मैदा भी खराब ना हो, आपके सीने के अंदर जलन भी ना हो, मतली भी ना हो, तेजाबियत भी ना हो, तो भाई कुछ भी नहीं, इस दफा ईद की जो शॉपिंग करने जा रहे हैं, जहाँ पर आप नेशनल और शान की मिसालें खरीदने जा रहे हैं, जहाँ पर केचप खरीदने जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीजें, वहां पर कॉस्मेटिक स्टोर या मेडिकल स्टोर का चक्कर लगाकर हाजमा कंट्रोल सिरप किसन का भाई जरूर लीजिएगा। ठीक है जनाब, उसके बाद चाहे तो क्या कहते हैं हिफ्ज मात कदम के तौर पर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर जब आपको लगे कि भाई आपने ज्यादा खा लिया है, ठीक है जनाब, और भारीपन महसूस हो रहा है आपको, तो भी जरूर मैजिकल हमारा ये मैजिकल किस्म का सिरप है भाई, और जिसको कहते हैं हाजमा कंट्रोल सिरप।

जी जनाब, ईद के ऊपर बारबेक्यू बहुत ज्यादा लोग खाते हैं जनाब, और उसके साथ साथ तली हुई चीजें ज्यादा, मिसाले वाले कबाब, चिकनाई से भरपूर कोरमा जनाब, जिसके अंदर चिकनाई बहुत ज्यादा हो, लोग बहुत ज्यादा इंजॉय भी करते हैं ना जनाब, चर्बी ज्यादा हो बकरे की, उसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा ऑयल वाली बिरयानी मुसलसल, यानी कि दो तीन दिन कुछ लोग क्या करते हैं भाई, गोश्त बहुत ज्यादा आ गया तो रोटी छोड़ो, बस गोश्त ही खाते जाओ, तब भी जाके ये प्रॉब्लम होता है जनाब। ठीक है जनाब, बहुत ज्यादा कलेजी खाने से भी भाई तेजाबियत बढ़ती है बहुत ज्यादा, कलेजी को थोड़ा थोड़ी लिमिट में खाया ज्यादा अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक्स के साथ गोश्त खाएंगे तो बेड़ा गर्क होगा आपके, यकीन कीजिए, एक एतदाल के साथ जरूर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है जनाब, सीने की जलन हो सकती है बहुत ज्यादा गोश्त खाने के साथ, पेट भारी आपका महसूस होता है, गैस, मतली, कब्ज, बदहजमी, तेजाबियत, ये सारे मसाइल जनाब ऐसे हैं के जो आपको पेश आ सकते हैं, लेकिन हल हम आपको बता रहे हैं जनाब जिस तरीके से हम आपको बताते हैं भाई, छाइयां हैं तो किसन की जाफरानी क्रीम इस्तेमाल करें, चेहरा फ्रेश नहीं लग रहा तो भाई हमारे फेस वाशेस का इस्तेमाल करें, जैसे कि किसन प्योर वाइटनिंग लवली फेस वाश है, जैसे गो पिंपल फेस वाश है, जैसे कि ग्लूटा वाइट फेस वाश है। ठीक है जनाब, अगर जो है खुशबू चाहिए, खुशबू क्या इस्तेमाल करेंगे आप, यकीन करेंगे अल्लाह को जान देनी है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग ये सुन रहे हैं कि खलील भाई अक्सर कह रहे होते हैं अल्लाह को जान देनी है, तो अल्लाह को जान देने का मकसद ये होता है कि ये मैं हलफ ले रहा होता हूँ, हलफ उठा के मैं आपको बोल रहा होता हूँ कि ये जो बात है ना ये 100% सच है। ठीक है, तो आज अर्ली मॉर्निंग मैं अपने ऑफिस जब जा रहा था, आप यकीन कीजिए अल्लाह को जान देनी है कि मेरे पीछे एक बंदा आ रहा था, उसने मुझे दो आवाजें मारी। ठीक है जनाब, तो मैंने पीछे ऐसे देखा, भाई भाई भाई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इसको, तो कहते भाई आपने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है, अल्लाह को जान देनी है, यही उसकी वार्निंग थी, भाई कौन सा परफ्यूम है आपका। मैंने कहा यार ये ज़ारा परफ्यूम है। ये कौन सी कंपनी का, मैंने कहा केसन कंपनी का है ज़ारा। तो आज मैं सुबह, वैसे मैं अकबर लगा के निकलता हूँ जब भी, लेकिन आज मैंने ज़ारा परफ्यूम लगाया हुआ था, ज़ारा केसन के परफ्यूम है, खुशबू के हवाले से बहुत ही प्यारी खुशबू है, बहुत सारी है, चूंकि है ये है फीमेल्स के लिए, लेकिन मर्द बहुत ज्यादा लेके जाते हैं, बहुत ही मीठी खुशबू है, बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी, यकीन कीजिए कि ये मैं हैरान हो गया, यानी कि शायद मुझे फील नहीं हो रही थी, लेकिन वो मैं जहाँ से गुजर रहा था ना उनको फील हो रही थी, कोई बंदा जो गुजर रहा है ना, इसमें खुशबू कोई बहुत अच्छी लगाई हुई, तो वो मैं बात वहां से निकली कि क्या क्या हम नहीं बनाते भाई आपके लिए। ठीक है जनाब, परफ्यूम तक केसन ने बनाए हुए हैं, और इस ईद के ऊपर जरूर केसन की भाई खुशबू जरूर खरीदिएगा, चाहे तो पहले टेस्ट करें, हमारा टेस्टर 250 रुपए का है। अकबर और जारा के अंदर दो हमारे छोटे परफ्यूम हैं, ठीक है जनाब, 10 ml के, जो कि आपको 250 रुपए में मिलते हैं, पहले उनको चेक कर लें कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, कितनी देर रुकती है, फिर उसके बाद जो है आप खरीदें केसन का अकबर या जारा, और ईद के ऊपर जरूर लगाइएगा। लेकिन ये ईद खाने पीने वाली ज्यादा है भाई, तो हमारी प्रोडक्ट हाजमा कंट्रोल सिरप

0: जी जनाब, तो ये प्रोडक्ट जो हमारी है इसके लिए हम एक ऑफर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पता हो कि टांग के अंदर हमारी एक ऑफर चल रही है इस वक्त, 1,000 की खरीदारी के ऊपर जाफरानी क्रीम फ्री है और ये आप वहां से खरीद सकते हैं, मंसूर जनरल स्टोर सदाम प्लाजा से। ठीक है जनाब। अच्छा, डेरा में भी एक ऑफर है जो कल से शुरू होगी और पहाड़पुर में भी आज से एक ऑफर स्टार्ट हो रही है। ठीक है जनाब। और वो हाजमा कंट्रोल सिरप की है। पहाड़पुर में जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, ठीक है जनाब, बड़े बड़े जो सेल पॉइंट है हमारे, जैसे कि हसीब जनरल स्टोर, रंगपुर अड्डा, नाम नोट करते जाएं, हर किसी के पास नहीं जाना भाई, मैं बता रहा हूँ। ईद के दिनों में लड़ाई हो जाएगी आपके दुकानदार से, दुकानदार बोलेगा कौन सी चीज फ्री में मिलती है, हर कोई नहीं देगा आपको ये ऑफर। मैं आपको पहाड़पुर का बता रहा हूँ, ये जो मैं नाम बता रहा हूँ इन्हीं के पास जाएंगे तो आपको ये ऑफर मिलेगी। रंगपुर अड्डा के ऊपर है हसीब जनरल स्टोर, यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये ऑफर मिलेगी। 1,000 की खरीदारी करेंगे, साथ में हाजमा कंट्रोल सिरप आपको फ्री मिलेगा। ठीक है जनाब। इसी तरीके से फ्रेंड्स एंड फैमिली पर जाएंगे, वहां पर भी फ्री मिलेगा। नवीद के पास जाएंगे, नवीद जनरल स्टोर, वहां पर भी फ्री मिलेगा। जीशान जनरल स्टोर के ऊपर जाएंगे, वहां पर भी फ्री मिलेगा। ठीक है जनाब। अवेश जनरल स्टोर के ऊपर जाएंगे, वहां पर भी ये फ्री मिलेगा। ये नहीं कि ईद की जो आप जरूरी बात है, ईद केसन के बगैर कैसे मुकम्मल हो सकती है, आपने चेहरे के ऊपर रौनक लेके आनी है तो जफरानी क्रीम खरीदेंगे, आपने अपने बालों को महकाना है तो केसन का शैम्पू खरीदेंगे। ठीक है जनाब। केसन का ऑयल खरीदेंगे, केसन के फेस वॉश खरीदेंगे। अच्छा जी, इस ईद के ऊपर भाई अगर आप ये चाहते हैं कि आपके चेहरे भाई जो है ग्लो करते हुए नजर आए, फ्रेश फ्रेश नजर आए, तो भाई अपने पास केसन के फेस वॉश, किसी एक फेस वॉश का इंतखाब कीजिए। चाहे तो आप ग्लूटा वाइट फेस वॉश खरीद सकते हैं, चाहे तो लवली फेस वॉश, चाहे तो गो पिंपल फेस वॉश, ये 3-4 किस्म के फेस वॉश हैं। और एक चीज जो सिर्फ इन्हीं मौकों के ऊपर इस्तेमाल की जाती है वो अर्जेंट फेशियल होता है, तो भाई केसन का अर्जेंट फेशियल भी है, लेकिन ये ट्यूब में है। ठीक है जनाब। बहुत सारे लोग साशे ढूंढ रहे होते हैं, तो साशे वाशे हमारे नहीं है भाई, हमारी ट्यूब होती है जो कि 400 रुपए की है, और इससे आप तकरीबन 10 दफा फेशियल कर सकते हैं, यानी कि 40 रुपए का आपको एक फेशियल पड़ेगा। और इसके अंदर वाइटनिंग बूस्टर मौजूद है, और हम ये कहते हैं कि आप हमारा ये जो अर्जेंट फेशियल खरीदते हैं इसको लगाने का एक तरीकाकार है, 7 मिनट का प्रोसीजर आपने करना होता है हमारे फेशियल के साथ। यानी कि पहले 3.5 मिनट 4 मिनट आपने इसकी क्रीम लेकर अपने चेहरे के ऊपर हल्का सा मसाज करना है अच्छे तरीके से। ठीक है जनाब। अच्छे तरीके से आप इसको मसाज करते जाएं आंखें बंद करके, और 3-4 मिनट तक मसाज करें। उसके बाद मसाज करने के बाद इसको छोड़ दें। ठीक है जनाब। छोड़ने के बाद 7वें मिनट में, यानी कि 7 मिनट देने होंगे आपको हमारे ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए, जिसका नाम है केसन अर्जेंट फेशियल, 400 रुपए का आपको मिलेगा। ठीक है जनाब। 7 मिनट के बाद आपका चेहरा देखने वाला होगा, समझ आ गई, इंस्टेंट ग्लो, क्योंकि इसके अंदर व्हाइटनिंग बूस्टर मौजूद है। और इसमें हम कहते हैं कि आप इसे नीम गर्म पानी से चेहरा धो लें। वजह ये होती है कि ये जो अर्जेंट फेशियल, ये बेसिकली व्हाइटनिंग क्रीम होती है। ठीक है जनाब। और वो चिकनाई वाली होती है, वो ठंडे पानी से नहीं जाती, तो इसलिए हम कहते हैं क्या करें, गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से चेहरा धो लें। अगर ऐसा नहीं करना चाहते आप, तो जो 3 मिनट लगा के आप हमारा अर्जेंट फेशियल बैठे हैं ना, उसके ऊपर लवली फेस वॉश लगाकर एक दफा फिर से मसाज कर लें और धो लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्रीम जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है जनाब। तो ये जहां पर हमारे जो है फेस वॉश है, वहां पर अर्जेंट फेशियल भी हमारा है, तो ये लोग अक्सर इन्हीं मौकों के ऊपर खरीदते हैं कि भाई खरीदना है। अच्छा जी, मैंने आपको पहाड़पुर का बता दिया कि पहाड़पुर के अंदर ये दुकानें जिनके ऊपर आपको हाजमा कंट्रोल सिरप फ्री मिलेगा, लेकिन फ्री ऐसे मिलेगा कि केसन की कुछ चीजें खरीदेंगे जिनकी जिनकी मालियत जो है वो 1,000 रुपए होनी चाहिए। 1,000 की प्रोडक्ट खरीदेंगे तो साथ में आपको हाजमा कंट्रोल सिरप जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो जनाब इन दुकानों पर जाइए और हासिल कीजिए ईद वाली
1: आप पोस्ट के दफाक वाली एहसास दाद केसन नेचुरल्स रिख्ती ने व्यार दे द फितरत लजड़ स्ताखुलात यो सौगात केसन नेचुरल्स स्ताद बावर नशा पहर चांस की के ये मीना और रणा
2: केसन नेचुरल्स पाकिस्तान स्ताद तबीख कुला मुलगरी
0: जी जी तो केसन नेचुरल्स

अच्छा ये पहाड़पुर में ऑफर है, टांग के अंदर जो है वो 1000 रुपए के साथ आपको क्रीम मिल रही है और डेरा इस्माइल खान वालों। हाँ जी रेडी हो जाओ भाई, आपकी अपनी कंपनी, आपका अपना शहर, आपके अपनी मेन आउटलेट, तो ऑफर भी सबसे बढ़िया होनी चाहिए डेरे वालों के लिए क्या। हाँ जी।

0: सबकी नजरें अब
1: जी जनाब, जो ऑफर है टांग वालों के लिए, 1000 रुपए के साथ ब्यूटी क्रीम फ्री है, केसन की जाफरानी क्रीम जो आपके चेहरे को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाएगी, दाग धब्बों को खत्म करेगी, हलकों को खत्म करेगी, डार्क स्पॉट्स को खत्म करेगी, छाइयों को खत्म करेगी, दानों को खत्म करेगी, चेहरे को बहुत ही प्यारा बनाएगी। 1000 की चीजें खरीदें, वहां पर ये क्रीम हासिल करें। पहाड़पुर के अंदर जो 5-6 दुकानें बताई हैं, 1000 के प्रोडक्ट खरीदें, साथ में हाजमा कंट्रोल सिर्फ फ्री हासिल करें। डेर इस्माइल खान में अभी हमारे पास हाजमा कंट्रोल सिरप नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आज शाम तक पहुंच जाएगा। तो कल से ये ऑफर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। 1000 रुपए की जब आप खरीदारी करेंगे तो आपको 3 चीजें फ्री मिलेंगी। 1000 रुपए के साथ 3

जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, कैसे हैं खलील भाई? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और शो बेस्ट है, और केसन की ऑल प्रोडक्ट्स का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। ये जहाँ से बात कर रही है ना कश्माला, इनके जो सेल पॉइंट है वो 72 अड्डा है, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सेल है हमारे प्रोडक्ट्स की। और आज लिटरली वो शेरवली जो है ना मेरे साथ लड़ रहा था कि मुझे एक कार्टन चाहिए हाजमा कंट्रोल सिरप का, लोग ईद के ऊपर क्या करेंगे? अब यकीन करें कि मुझे कह रहा था कि ईद लोग क्या करेंगे ईद के ऊपर। मैंने कहा भाई इसी प्रोडक्ट के ऊपर ठहरे। कहते हैं भाई हर कोई जो है गोश्त खाता है और बहुत ज़्यादा खाता है, और हमेशा बदहजमी का कोई इलाज भी अपने पास होना चाहिए। तो वो कह रहे थे मुझे हर सूरत में चाहिए। आज उनको सारा प्रोडक्ट चले गए सिवाय हाजमा कंट्रोल के। तो यहाँ पर जितने लोग हैं भाई 72 अड्डे के आसपास, अवाना वाला नाला, ये इसके साथ जितने लोग हैं उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे इस प्रोडक्ट, वैसे तो सारे प्रोडक्ट वहाँ पर जा रही हैं, ऑयल, शैम्पू, फेस वाशेज, सोप, ज़फरानी सोप, ग्लूटर सोप, सारे के सारे सोप, लेकिन हाजमा कंट्रोल सिरप बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब वो बंदा कार्टनों की सेल के ऊपर आ गया कि मुझे कार्टन के कम ना भेजा करो आप। तो शॉर्ट था क्योंकि आपको बताया कि हम इसकी रेट कम कर रहे थे, तो अभी इसका रेट कम हो गया है। मैं आपको बताऊंगा जैसे मेरे हाथ में पैक आएगा और मैं उसकी प्राइस देखूंगा कि कितना कम किया गया है, तो कल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसका स्टॉक आज ही हमें मिलना है, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर पुराना स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है, तो आप वहां से भी खरीद सकते हैं। बताने का मकसद ये होता है कि अगर आपको कहीं दुकानदार से नहीं मिल रहा तो उसकी वजह शॉर्टेज है, और उसका न्यू बैच इंशाल्लाह बस रेडी हो गया, ठीक है। अच्छा जी, कैसे कहते हैं कि केसन के ऑल प्रोडक्ट्स का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है। भाई मुझे केसन कंपनी की बहुत सारी प्रोडक्ट यूज करते हुए एक साल हो गया है। शैम्पू, ऑयल और सोप्स और हाजमा कंट्रोल सिरप रेगुलर यूज करती हूँ, बाकी प्रोडक्ट भी यूज करती हूँ, मगर ये कभी नहीं छोड़े। आज मैंने अपना नेम नहीं लिख रहा भाई। आज आप बताएं कि मैं कौन हूँ। रेगुलर यूजर के साथ साथ पहले रेगुलर लिसनर भी सही, मगर आजकल शो नहीं सुन पाती। सबको सलाम, और क्योंकि मेरी बहन मुझे भी यकीन कीजिए आपका नंबर सेव नहीं है यहाँ पर हमारे पास हमारे सिस्टम में, लेकिन आपका जो लास्ट मैसेज आया था ना, आपका आया है 1 मई को, आपका पहला मैसेज आया था 4:32 पर, वो चैट हमारे पास ठहरी होती है ना, तो जैसे आपका मैसेज आया तो नीचे नीचे लिखा होता आई एम कश्माला खान, तो मैंने नाम उधर से देखा है ये कश्माला खान 72 अड्डा से हैं। तो जनाब ये रेगुलर कुछ लोग हैं जो हमारे रेगुलर लिसनर नहीं है, लेकिन वो रेगुलर कॉलर जरूर होते, रेगुलर जो है कॉलर या शो में नहीं आते, रेगुलर शो के लिसनर नहीं होते, लेकिन वो हमारे यूजर रेगुलर होते हैं। तो भाई कश्माला आपका बेहद शुक्रिया। बिल्कुल जी, कुछ लोगों की बातें सिर्फ बातें नहीं होती, उस उनका इलाका बताता है हमें, जिस तरह का ये लोग फीडबैक देते हैं ना हमें जिस भी इलाके से। पहली बात तो ये है कि हमारे लिसनर कभी झूठ नहीं बोलते हैं कि भाई हम खलील भाई को शो में बता दें, क्योंकि जो बंदा जिस इलाके का है ना वहाँ पर हमारा सेल पॉइंट होता है, ठीक है जनाब, और हमें हर सेल पॉइंट बता रहा होता है कि अभी क्या सेल चल रही है। तो ये जिस इलाके में ये रहती हैं, अब सिर्फ ये तो यूज़ नहीं करती, बहुत लॉयल यूज़र है ना हमारे, जिस तरह असद अंकल अभी बता रहे थे, वो टांग में रहते हैं लेकिन उनके रिलेटिव इसमें रहते हैं, लक्की में रहते हैं, तो वो उन्होंने उधर प्रोडक्ट हमारे पहुँचा दिए। तो अब सुनने वाले तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें कुछ लोग जो हमें एक्टिव होते हैं वो और एक्टिविटी के साथ पर्स लोगों को बताते हैं। तो कश्माला बेहद शुक्रिया, और हम आपसे और आपके इलाके से बहुत

0: जनाब, कॉल कर सकते हैं। आखिरी 7-8 मिनट है हमारे पास। मैसेजेस मैंने आज आप लोगों के जल्दी जल्दी से ले लिए हैं और अभी मैंने कहा है थोड़ी सी आपकी कॉल्स भी ले लेते हैं, बीच में फिर खच बन जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम, शबरा उस्ताद हमारे साथ हैं।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है खलील भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह सही ठीक ठाक, तो सर ठीक ही वे चंगे वे
1: मेहरबानी, प्रोग्राम सुन लेते हैं, बड़ा मजा आ रहा पे।
0: अच्छा जी, एंड ते आज सारा प्रोग्राम सुन के दावे सर हम आखिरी मैं के आखिरी 7 मिनट इन प्रोग्राम सारा सुन के दे तो आज ऐसा ऑफर भी हर इलाके दे विच जितना सारी गुंजाइश है सारी दी से।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारा सुन दा अपना देर वाला दा दिमारे दा दे के ना आज मैं कंट्रोल आ जान दा आया नहीं के आज शाम वेले आवे तो कल भी उना दे मारे भी ज्वेलरी ते जेरा डिस्काउंट दे के ते फार पूरा ने मारे ते थोड़ा सा शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि लिसनर दा भी हक है जेरी थोड़ा नाल मोहब्बत रख दे।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, हक है मोहब्बत जवाब
1: मेहनत करेगा कोई कंपनी या कोई आर जे इतना हर बंदे मोहब्बत करेंगे जो मैं समझे ना जो खलील भाई जितनी मेहनत मोहब्बत करेंगे लेकिन हर लिसनर को एक लेवल से एक बराबर से एक स्टैंडर्ड से सारा को जरा है ना अखलाक नाल मोहब्बत लगी को प्रोग्राम ज्यादातर सिर्फ वाहद ये प्रोग्राम चलता पे लिसनर जरा ज्यादा राशि होंगे और मोहब्बत एक थारी मोहब्बत एक थाकू करा दे पहला पेजा।
0: जी बहुत शुक्रिया शुक्रिया जनाब नवाजे,
1: क्योंकि थारी मोहब्बत पर आवाज अंदाज और दिल नाल मोहब्बत हर बंदे नाल मोहब्बत रख दे ते और एक कोई कंपनी इतनी डिस्काउंट नहीं जाती कोई क्योंकि सारे लिसनर दे इसको ली इजी प्राइसिंग घटे ते जी हाजमा कंट्रोल थी गया ते ए ता लाजमी है क्योंकि गोश्त दा हिसाब है को बड़ी कुर्बानी है ते ए ता जे रहना जरूरी बार है जो कोई ना कुछ ओवर लोड पी लेंदा है खाना ता जे रहना ते ओवर लोड करना नहीं चाहिए क्योंकि गोश्त खत्म नहीं थी ना होता ते ना कोई सारी जिंदगी रहा होता है ते ए ता दार रहो खासकर गरीबों दा एक उस जहाज ते गरीबों दा ख्याल करो उस जहाज ते गोश्त दा हिस्सा दे जो जहाज ते देखो आज कल सोचो जो कहता कहता मन कोई हिस्सा नहीं रह पाए उसकी इफ्तात कोई उसको तुसा नोट करो उसकी लिस्ट बनाओ उसके घर गोश्त बगाओ ना के तुसा उस जाते बजाओ जो फिलहाल मेरे घर गोश्त आ दी कहते मैं भी उस घर न दो उसको अगर उस रिश्ते का गलती की थी या अपनी मोहब्बत है या रिश्तेदारी है तो तुसा उस जाते गोश्त दो जिथा जो
0: कितनी कीमत आला याद है जिन्हें तुसा होश संभाले ते तुहाकू याद होवे के भाई एक टाइम विच साडा हिस्सा या वंडा इतने 100 दा या इतने हजार दा हुंदा है।
1: ये सब सारी क्योंकि 1972-73-74 दे विच जो है ना मेरी तकरीबन 8-9 साल आई।
0: अच्छा जी,
1: 10 साल जी जी, तो उस दे विच जो है साकू याद आंदा है लेकिन उस वेले सब वड़े वड़े जो है ना सारे बैल चौकर जो है डाण दुनियान मुंजी दुनियान ओ करेनियान सारे हिसाब नाल उस टाइम जो है ना सब ज्यादा को ज्यादा बहुत ज्यादा हो गए छोटा नहीं होंगे लेकिन 12-13-14 हजार का जो है ना साकू उका प्यार जो है ना उस वे वे चौकर होने
0: मैं तो एक हिस्से एक वनडे की गल करना पिया तो कितने का याद है ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੋਲ ਘੱਟ ਕਿਤਨਾ ਯਾਦ ਹੈ
1: ਸਾਕੂ ਘੱਟ ਕੋਲ ਘੱਟ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ 900 ਹਜ਼ਾਰ 1100 ਵਾਲਾ ਵੰਡਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਟੱਕ
0: 900 ਹਜ਼ਾਰ 1100 ਦਾ ਵੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇ ਤੇ ਹੁਣ
1: 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੰਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 5-6 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੋਖਰ ਵਿਕਦਾ ਪੇ ਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਵਿਕਦਾ ਪੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
0: ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਸੰਗ ਕੀਤਾ
1: ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ आलिया भतरी जी को मेरे दिल दिल सलाम जो मैं कबूल याद कर दी है मेरी मैं बेटियां ला मेरी बेटियां शादी का कहीं मैं मिसाल ये रहना किस्म दा ये जे बंदा तो उसको तो सारे मेरे भतरीजियां बनी जी को सलाम ते खास कर जे रहना आलिया मेरी बेटी भतरी जी बनी जी को सलाम अस्सलाम वालेकुम
0: वरहमतुल्लाह। आलिया बक्कर को आज उन्होंने आके के भाई चाचे शबरे दी आवाज ठीक नहीं आ रही साडे तो आज तो सही आई उसकी हैं जी स्पीकर सारे में फुल स्पीड ते खोल देते हैं ते अगर आज भी नहीं आई तो तुम्हारा गिला
2: मन अपने चैन बढ़िया
0: आज बिल्कुल सही आवाज गई होगी उनको। ठीक है जनाब, और कौन है, इरम शहजादी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, मैसेजेस ठकाठक फिर आ गए हैं, दुरे अदन भी आ चुकी हैं, और मैं आपकी कॉल लेता हूँ तो फिर एसएमएस रहते हैं, एसएमएस की तरफ जाता हूँ तो फिर कॉल जाती है। ठीक है जनाब, तो चलो जी एक दफा फिर से मैसेजेस की भरमार है। दुरे अदन है, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? एंड अनिसा डियर, थैंक्स आपका और उस्ताद जी आपका जवाब ठीक है। ये सवाल मैंने कहीं से नहीं देखा, बस खुद बनाया, और जवाब भी आपने जो किस्सा बयान किया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, उसमें से ये है, मगर मेरा जवाब ये है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आसा है जो फिरौन के दरबार में जादूगरों की बिला मुकाबला दौड़ी थी, हालांकि ना उसमें गोश्त था ना खून था। अच्छा जी ठीक है, ये और तरफ आप इसको ले गई हैं, चलो आपकी अपनी बनाई हुई है ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा काश के केसन के प्रोडक्ट पहले मिल गए, जिंदगी मिल गए होते, जिंदगी से यही गिला है, ये जरा देर से मिला है। सलाम भाई कैसे हैं, शो बहुत ही खूबसूरत है, और मासे आई एम यूजर ऑफ केसन, सब सुनने वालों को सलाम, रोनी फ्रॉम पहाड़पुर। मेरे पाकिस्तान असमत पहलवान बहुत अरसे बाद आज हमारे पास आए हैं, 15 मई को आए थे आखिरी दफा और आज भी आ रहे हैं।

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिस्निंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM। बीमारी हक दे अविलाजी सुनत अमल ले। अविलाजी सुनत अमल ले।
3: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना डेर परेशान आयो और डेर गर्जिदली कड़ीदली यो। डेर गर्जिदली कड़ीदली यो।
2: नो बिल्कुल मायूसके गई माँ, मायूसके गई माँ। अलशिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नुरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले तरला सकवले शे।
3: और दोनों मालूमात दे पारा पदग नंबर काल कवले शे
2: 0319 55 23 404।

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Welcome to Radio Amal 88.4.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है, ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है, ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।